नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तनकारी क्षमता रखता है, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति। चाहे आप यात्रा कर रहे हो, सैर कर रहे हो या बस शांति के आपके पल का आनंद ले रहे हो, यह जानने के लिए एक यात्रा शुरू करें कि तनाव को प्रबंधित करने में माइंडफुलनेस कैसे गेम चेंजर हो सकती है। फ्रेंड्स, इन दिनों जीवन वास्तव में एक अराजक भवंडर जैसा महसूस हो सकता है ना? आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ अक्सर तनाव के साथ साथ आती है, जो रोजमर्रा की परेशानियों में हमारा निरंतर साथी है, लेकिन यह आशा की कारण है। माइंडफुलनेस दर्ज करें, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण जो आपके अनुभव को बदलने का क्षमता रखता है। ऐसा एक शांत, अधिक केंद्रित अस्तित्व के लिए अपने टिकट के रूप में कल्पना करें। दोस्तों, आपको आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में ये क्या है। खैर, माइंडफुलनेस का मतलब है पल में मौजूद रहना, टू लिव इन द मोमेंट। अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो।

होना। ये तनाव और चिंता के चुंगुल से मुक्त होकर वर्तमान को अपनाने का एक सचेत प्रयास है। ये प्रथा प्राचीन परंपराओं में निहित है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसने हमारा तेज गति वाले जीवन के लिए एक औषधि के रूप में अपनी जगह बना ली। जैसे कि हम माइंडफुलनेस के जादू को उजागर कर रहे हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये तनाव को कम करने में कैसे अद्भुत काम करता है। हमारे विचारों के बारे में गैर निर्णयात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करके माइंडफुलनेस हमें तनावों का निरीक्षण करने और उसमें अलग होने की अनुमति देती है। ये एक मानसिक स्थान को बनाने जैसी, जो हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देती है, और जोनिंग आउट के बारे में नहीं है। ये आपके अनुभवों को एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ ट्यून करने के बारे में है। पहला सवाल आता है कि माइंडफुलनेस है क्या? क्या है? कोई मेडिटेशन है जिसमें बैठकर कई मिनट या घंटे तक ध्यान लगाना? आपको बता दें कि माइंडफुलनेस ध्यान का एक छोटा रूप है, इतना छोटा कि आपको इसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होता है। बस ये 5 मिनट अपने लिए रोज निकालें, और ऐसे समय पर निकालें जब आप शांत मन यानी पीसफुल माइंड से सिर्फ अपने साथ बैठ सके। ये समय सोने से ठीक पहले, बिफोर बेड टाइम, या फिर सुबह जागने के तुरंत बाद का समय भी हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर इन समय पर व्यक्ति का मन शांत होता है और वो किसी हड़बड़ाहट नॉट इन अ हरी में होता है। यदि आपके साथ ये समय संभव नहीं होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं। आप शांत होकर पालती लगाकर यानी सुखासन में बैठ जाए, आंखें धीरे धीरे से बंद करें, मन शांत करें। इसके लिए गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। बैठने के समय अपनी कमर

अपना कोई विचार नहीं बनाना है, ना ही इन आवाजों से कोई जुड़ाव महसूस करना है। फिर चाहे वो बच्चे के रोने की आवाज हो या हंसने की या चिड़िया के चहकाने की, इन आवाजों को सिर्फ सुनना है। खुद को इनसे अलग रखते हुए आपका ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए। 3 से 4 मिनट ऐसा करने के बाद आप चाहे तो अगले 1 मिनट अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए रखें। ध्यान दें, आपको अपनी किसी आदत को सुधारने ही, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है, दूसरों को कोई दुख न हो और आपका भी कोई नुकसान न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करें। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों शांत होते हैं, खास तौर पर जब आप इस एक्सरसाइज को सुबह के समय करते हैं तो पूरा दिन बहुत शांत और आरामदायक बीतता है। आपको अपने निर्णय लेने में आसानी होती है। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को ऑफिस में थोड़ा समय निकालकर कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और अपने अंदर के नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करना है। माइंडफुलनेस की नियमता प्रैक्टिस से मन शांत होता है, गुस्से पर नियंत्रण रहता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, ऊर्जा का विकास होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप अधिक खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो ये है कि माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या है और कैसे होता है। दरअसल दोस्तों, माइंडफुलनेस ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाएं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ये एक तरह से ध्यान ही है, बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस में हम जिस लम्हा जहां होते हैं अपना पूरा ध्यान वही लगाना होता है और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करना और जीना है। माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल इसके जरिए हम मौजूद लम्हे में जुड़ सकते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाती है कि इस लम्हे ऐसा होता है तो क्या होता है, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि वैसा नहीं हुआ आदि। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियां भी हमें परेशान नहीं करती है। हमें मान लेना चाहिए कि हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना सकते हैं। अपने रिएक्शन या प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इसे धीरे धीरे हम स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस के कई फायदे हैं दोस्तों। तनाव से मुक्ति, याद करने की शक्ति में इजाफा, एकाग्रता का बढ़ना, भावनात्मक स्टेबिलिटी होना, शांति और खुशी का एहसास बढ़ना, हाइपर एक्टिविटी कम होना, गुस्सा कम आना, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ना, फैसले लेने की क्षमता में इजाफा, नींद का बेहतर होना। माइंडफुलनेस थेरेपी को करना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप जिस वक्त जहां हो पूरी तरह वही ध्यान लगाना होता है। इसके लिए कमर सीधा रखकर कुर्सी पर बैठे या फिर आराम से नीचे बैठ सकते हैं। आप सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं, अपना ध्यान सांस पर लगाए, अपने अंदर आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, सहज रूप से महसूस करें, सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें, एक हाथ पेट पर रखें और गौर करें कि जब सांस ले तो पेट बाहर की तरफ जाए और जब सांस छोड़ते तो पेट अंदर की तरफ जाए। ये भी गौर कर सकते हैं कि सांस ठंडी या गर्म है। जब भी ध्यान सांस से हटकर इधर उधर जाए, घबराए नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। हमारा मन बहुत चंचल है और एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, लेकिन भटकावा के बाद फिर से अपने मन को सांस पर केंद्रित करना है। आप सांस के प्रति सजग रहे और जब भी मन भटके उसे लौटकर फिर से सांस पर लेकर आए। ऐसा करते हुए सांस सामान्यता तरीका से ही ले, सांस गहरी न ले। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस को इस क्रमिक विकास के रूप में सोचे, न कि अंतिम रेखा तक पहुंचने की दौड़ के रूप में। ये इसे आपके जीवन में धीरे धीरे इस तरह से बुनने के बारे में है जो आपके लिए बिल्कुल सही लगता है। इसीलिए इसे एक बड़ा उत्पादन बनाने के बारे में तनाव न ले, इसे करने दे। सचेतनता को अपने जीवन में सहजता से प्रवेश देने के लिए तैयार रहे, इसे सरल और तनाव मुक्त रखें।

0: प्रिय श्रोताओं, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, सचेतनता का आजीवन यात्रा है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रता और लचीले आत्मा के करीब लाता है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रित और लचीले आत्मा के करीब लाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वयं वर्तमान क्षणों में व्यस्त रहे और जब तक हम दोबारा न मिले आपके दिन सचेतन अनुभवों और आंतरिक शांति से भरे रहे। अलविदा और अच्छा ख्याल रखना। नमस्कार, आपका चेतन।
1: ഇപ്പോൾ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടെ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണിത്, മാധുരി പാടിയത്.

महफिल तो खत्म होती है पर नशा बाकी रहता है। हाँ, गजल केवल अल्फाज नहीं बल्कि वह खामोशी है जो संगीत के रुकने के बाद भी कानों में गूंजी रहती है।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का, मौसिकी पंकज उदास की, एल्बम का नाम था नबील।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: मिताली मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

अरे भी झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा झूठा तुम्हारा जाम भी झूठा, तुम्हारी रात झूठी चांद झूठा आसमां झूठा, तुम्हारे अश्क गम झूठे तुम्हारा जख्म जहां झूठा, तुमसे बढ़ के कोई बेमुरव्वत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें

मोहब्बत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा कि कल आएंगे चराग जले और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, ना तुम बाज आओ ना हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं। बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं, और ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई तो खुदा वाले भी बरसों की इबादत।

0: देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
2: तेरा जलवा, तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। रेखा भारद्वाज की आवाज़।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे संजय आनंद झा। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र की आवाज में ये रचना। रचना है गुलजार की, संगीतकार विशाल भारद्वाज।
1: रात कच्ची पड़ रही थी।
0: आवाज गुलजार की है।
1: मैं आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहाँ से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ये सब यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सिलसिला फिल्म का गाना है अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल हैं, शिवहरी का संगीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: खूबसूरत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन। विविध भारती से ये है कार्यक्रम यादों की महफिल। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म उमराव जान, आशा भोसले की आवाज, शहर यार के बोल, खयाम की तर्ज।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। ये घर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं
3: करना है। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: सौतन की बेटी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी सावन कुमार के, संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका है सुरीला सफर का कंसेप्ट क्या है। इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं एक इबारत, और उस इबारत से आपको शब्द चुनने होते हैं, गाने चुनने होते हैं, और अपनी टिप्पणियां, अपनी यादें, अपनी बातें साझा करनी होती है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने यादें, बातें साझा की हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो अपना मोबाइल उठा ले और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाए और टाइप करें अपनी बात। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा देते हैं जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। दरवाजे पर कौन है? डाकिया। इस जमाने में डाकिया डाक लाया? हाँ। चिट्ठी? हाँ। क्या लिखा है? ख्वाब। साथ में है तोहफा। याद है बचपन में माँ, पिता, भाई, बहन को चिट्ठी लिखते थे, कभी घर की खैरियत पूछते, कभी छुट्टियों में आने का वादा करते, कभी महबूब के नाम खत चुपके से लिखा जाता था, उसे किसी के हाथों पहुंचाया जाता था, रेडियो से गाने गूंजते, खत लिखते सवरिया के नाम बाबू, और तेरा खत ले के सनम पाँव कहीं पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। लिखा है तेरी आंखों में, लिखे जो खत तुझे। इन गानों को नोटबुक में नोट किया करते थे, फिर कभी इन्हें पत्रों में लिखा जाता, कभी पत्रावली में भेजकर पढ़े जाने का इंतजार भी किया जाता था। आपने किया इंतजार? बहरहाल, तो फिर अपनी चिट्ठी वाली याद साझा करो ना। वो खिलखिलाकर हंस दी और बोली, तुमने तो एक बार बिना शब्द लिखे कोरा लिफाफा भेज दिया था। वो बोला, उसमें सारे शब्द थे, बस तुम्हें पढ़ने नहीं आया था, तुम्हें पढ़ने थे वो शब्द। और खत में शेरो शायरी वाला लम्हा? वो फिर खिलखिला दी। आज मोबाइल पर संदेश आते हैं, नीली टिक लगती है, जवाब भी आ जाता है, मगर वो खत की खुशबू, वो लिफाफे को बार बार खोलना, वो लिखावट में किसी को महसूस करना, किसी की छुअन को महसूस करना, सब कुछ कहीं पीछे छूट गया। दरवाजे पर अब डाकिया नहीं आता, मगर मन में आज भी किसी की चिट्ठी का इंतजार होता है। चिट्ठी आ जाए तो दौड़कर लगता है कि वो डाकिया सामने खड़ा है। तो बताइए दोस्तों, आज भी आप पत्र लिखते हैं? और पत्र में क्या कभी गुलाब का फूल भेजते हैं? बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथों से, ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं किसी खास मौके पर, जन्मदिन पर, दिवाली पर, दशहरे पर, और दशहरा तो करीब है ना, दिवाली भी करीब है, नए साल पर। तो कौन हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? अब तक तो आप बूझ ही चुके हैं, और इन शब्दों से जुड़े हुए गाने जरा बूझिए। लिखने से, डायरी लिखने से, किताबों में गुलाब के फूल रखने से, वो एक विद्या की पत्ती रखी जाती थी किताबों में, वो सब, वो सारी बातें आज याद कर डालिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम शुरू करते हैं सिलसिला। देखिए ना, डाकिया डाक लाया है, सुनिए और जरा हमें बता दीजिए कि कौन है डाकिया और कौन है अभिनेत्री इस फिल्म में। फिल्म है पलकों की छांव में। तो समझ गए ना, बूझिए डाकिया कौन है, अभिनेत्री का नाम, और साथ में अपनी बातें यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai।

0: किया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो ना।

डाके डाकला है भाई, किसके यहाँ अभी भी डाके आते हैं और चिट्ठी ले आते हैं? हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतजार रहता है चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतजार रहता है क्या? इंतजार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है इस गाने में, डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतजार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियां आती रहे तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियां। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ खास त्योहार हैं जहां पर बगैर चिट्ठी के काम नहीं चलता है, जैसे कि राखी का त्योहार है। बहन भाई को चिट्ठी जरूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी जरूर लिखते हैं। आप कब किन मौकों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई। कैसी चिट्ठियां सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतजार करते थे, चिट्ठियां लेने के लिए उत्सुक रहते थे। जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी। हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल जरूर पत्र आएगा। तो अब जरा बताइए कि ये जो इंतजार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है, किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है? किस फिल्म में आपने देखी कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतजार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतजार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती है। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दो बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी। मैं क्या करूं, ऐसा दो तीन दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पांव कहीं रखते हैं हम। फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है। कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपाकर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आंखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए जरा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की जरूरत पड़ी? किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया? हालांकि बहुत सारे पत्र छुपा कर लिखे जाते थे। बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी और एक विद्यापति आती थी, वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपका कर भेजा है?

जरा बताइए, ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए सरस्वती चंद्र, इसमें कौन है हीरोइन? हीरोइन का नाम बूझना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो जरूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी। जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया और मनीष और साथ में सुलोचना भी हैं इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं। किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएं भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है, आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो जरूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, जरूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है। बिल्कुल, ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जरूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ाकर जोर की आवाज लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम, और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था। पति या घर के और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतजार बड़ी सब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था, पर अब वो जमाना कहाँ। एक सेकंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुंचाते थे, और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतजार होता था। डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गांव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे, कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी, फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी, कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये

फिल्म का नाम बता दीजिए। आसान सा सवाल है, फिल्म का नाम पूछना है आपको। और ये भी बताते चलिए, किसके पत्र आपके नाम ज्यादा आते

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया, खोलते समय मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे साथ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी न आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। गाना बजता है, संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे, और हाँ, हर रोज 11 बजे पोस्टमैन का इंतजार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहां सब कुशल मंगल है, आशा करती हूं वहां भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूं, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुनकर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्टकार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्टकार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्टकार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफेद कागज पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में जिसके पास पहुंचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थीं, जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला, वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी हैं, उस लिफाफे को हमने दिया है अमूल्य निधि, और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए, और जरा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किनके पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियां संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है संभाल के रखने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई बाकी चीजों के लिए आपके पास जगह है लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज्यादा आते थे जरा ये बताइए, सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार एक जमाना था जब लड़कियां बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहां पर खत है पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा हूंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं। तो जरा जल्दी अतीत को साझा कीजिए क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है पत्र, गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको बूझना है एक बार फिर कौन है हीरो कौन हीरोइन।

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं, पढ़कर सुना रहे हैं और आप सभी हमारी आंखों के सामने, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए विविध भारती के स्टूडियो में। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली इलाकों में घर वालों की चिट्ठियां बहुत देर से मिलती थी, पढ़ने के बाद सुकून मिल जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फरमाइशी कार्यक्रम में एकमात्र पत्र लिखा गया जो शामिल भी हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेरे साथी दोस्तों के पत्र ज्यादा आते थे, हम जब पढ़ाई करते हुए स्कूल से कॉलेज गए तब बिछड़ गए थे। इस समय हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरी शादी होकर राजस्थान गई, दिल्ली से मम्मी पापा खत लिखते थे, मैं भी उन्हें लिखती। मेरी माँ बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए। दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम्य लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफर इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत जरूरी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम जरूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देखकर हमने पोस्टकार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था। उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से या जो भी नाम था। बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। जरा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब जमाना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम खत पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के जरिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के जरिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतजार होता था, इंतजार में रात भर आंखें तकती थी कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतजार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतजार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतजार की घड़ियों को खत्म कर देता जरूर है, पर आगे इंतजार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। खत को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थीं। सचमुच कुछ पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था। और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

फिल्म थी आए दिन बहार के आशा भोसले की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिख हीरोइन होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गजल याद आती है, प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर खत लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात जरूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज्यादा पोस्ट कार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूं। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठकर पढ़ने लगा, तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफर का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए जरा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत बढ़िया लग रहा है, खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताजा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतजार रहता था। डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था, अब वो जमाना गुजरे जमाने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताजा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि जरा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम की नोक से कागज पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं गुल जाया करती थी। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्श लालपुरी और संगीतकार रविन्द्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविन्द्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्योहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतजार रहता था, अब जमाना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गाने की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरे के रंगों से जुगलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रियतम प्रियजनों से भी ज्यादा प्रतीक्षा डाकिये की होती थी, पोस्टकार्ड अंतरदेशीय लिफाफों में सिमटे संवादों का आदान प्रदान ने डाकियों को प्रत्येक घर का सदस्य बना दिया था। गांव में मां की सुनी आंखें, पत्नी की पलकों, पिता की आशा को, इंतजार को, खुशी और मायूसी दोनों डाकिये से ही होती थी। क्या बात है भाई, आप सब ने आज अपनी यादें खंगाली और ताजा की हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब प्रोग्राम का ये सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। सुरीला सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये हुस्न तुमको दिया खुदा ने, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। नजर में बिजली, अदा में

0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें, जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद साकी से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग माता पिता के संग वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: हाँ,
0: हमारी
1: याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया
0: जी।
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसा पीछा का टाइम पीछा बनाता था
0: जी
1: सब्जी बनाता था
0: जी
1: इस सभी में माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया
1: हाँ
0: हुआ।
1: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास, हम बहुत तरह का खाना बनाने सीखे।
0: अच्छा।
1: और हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है,
0: जी
1: हम दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था,
0: जी
1: कोई चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और 1 बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है।
0: जी
1: आज जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ हाँ हाँ
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियाँ,
0: जी
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। मेरा एक कुत्ता था,
0: जी
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
0: जी
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए,
0: हाँ,
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो हो, सही बात है।
1: मेरा बच्ची भी अभी तक कुत्ता का बारे में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है, उसकी यादें तो दिल से कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई
0: जी,
1: लेकिन बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना,
0: जब
1: वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा,
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपने
1: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है। अभी
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना
0: जी,
1: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सका नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सका भी मेरा रेडियो है।
0: क्या बात है,
1: इसलिए मैं दिल से यही कहूंगी जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है।

0: और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचने का बिस्किट बना के देती हूँ। घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका? कुछ
1: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: जी, दिल खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना? जी। तो चलिए जय श्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे
0: जी।
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम।
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा
1: गेहूँ भी होती है मैडम।
0: जी, दाल गेहूं वगैरह होता है
1: जी मैडम।
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियां, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो।

0: आप हमें बताइए
1: जी। दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं
0: जी,
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे
0: जी।
1: पापा भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल।
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: क्या बात है। पर सोनिका जी ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती है क्या आप?
1: नहीं मैडम मैं ये नहीं करती, जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम। हरियाणा में जैसे एक स्कीम है एनआरएलएम की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम
0: जी,
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम से, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं, और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। काम करती मैडम कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: सोनिका जी जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना
0: जी जी जी,
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात,
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा बहुत अच्छा लगा आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: जी गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ
0: जी। आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार।
0: तो मिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा

0: से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
1: जी।
0: और हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
1: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
0: हमने खेत में धान बोया है मैम।
1: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
0: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
1: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन।
1: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
0: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
1: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
0: हाँ मैम।
1: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
0: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं।
1: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
0: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
1: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
0: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली
1: जी, क्या बात है,
0: मन चाहे गीत।
1: अच्छा,
0: और तो सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
1: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
0: हाँ मैम।
1: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
0: मुकद्दर का, सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमें।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है।
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी जी जी, यानी कि आप शॉप पे काम करती है, तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात।
1: जी हाँ जी हाँ जी, विवेक भारती के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है।
0: बीए और बीएड भी कर रखा है
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है, है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ, तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम।
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम पांच बहनें एक भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ कुछ ऐसा?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना
0: जी,
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: दोनों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े होते
1: लगाती
0: जो।

0: लाद के कड़े होते हैं जो वो वाला काम करते हैं हम।
1: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग वगैरह लगाती हैं।
0: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम।
1: जी जी।
0: कमीज होती है ना जो पहनने की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं निशान लगा के।
1: क्या बात है। तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
0: जैसे मैंने 1000 फराकों में निशान लगाया तो मेरे 500 रुपए हो गए।
1: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा अच्छा
0: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ।
1: मीठे में क्या बनाती हैं?
0: मीठे में खीर।
1: अच्छा, खीर यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
0: शान की, दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
1: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं यानी कि?
0: हाँ।
1: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता हाँ, होगा उसमें तो।
0: हाँ, चाहे आप उसमें सवैये डाल लो।
1: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
0: आप आइए, खिलाएंगे आपको पका के।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? अपनी पसंद बताइए।
0: मैं क्रांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
1: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा संगीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा।
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा अच्छा और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने।
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है?
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ, मन चाय जीता था वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: सुबह 6 बजे चालू करती है
0: जी
1: तो अपना काम तो हो जाता, तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना। और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके।
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताजा करना चाहते हैं। माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत कूदना ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे, वो जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना,
0: जी,
1: वो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के
1: हाँ,
0: खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप चुप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: कभी।
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या
1: हाँ
0: होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं बच्चे, बस
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो यहाँ पति की मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे।
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना?
1: हाँ,
0: तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो अलग गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ।
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है, फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी जी जी आप मंजरी जी बात कर रही है ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ।
1: जी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना।
0: जी जी जी जी,
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी, बढ़िया है। आप सुनाओ, आपके मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ पे,
0: जी
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है।

0: सोयाबीन और उड़दा बच जाते हैं यहाँ पर उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जुनी की।
1: क्या बात है, फिर देखिए जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना।
0: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
1: हाँ जी बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
0: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहते हैं यहाँ पे हर खेतों में लगती है दीदी।
1: जी जी जी।
0: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फले हैं, यहाँ पे फलने वाले हैं बस।
1: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
0: हाँ वो उबाल के दीदी जब वो फलते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छे लगते हैं वो बेर।
1: जी जी जी। और बबीता जी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
0: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी बेटी के ऊपर से।
1: सुनाइए।
0: बिटिया को अगर बच्चे होने तो बहू का सेना हो, नारी नर की खान कहावे, बिटिया घर को नाम चलावे। आज की बिटिया बहु काल की, परसो माँ बन गए हो। यहाँ पे दीदी ऐसे गाना गाए जाते हैं लोग?
1: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
0: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
0: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली।
1: बबीता जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी न कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस

0: कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महा सटेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।